सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर सुबह, चिंता लाहे हमारी। हाँ आया दूरों हूँ चल के, मैं तकी तो शरणाई जियो। मैं आसा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो। सो कहो टल गुर सेविए, एहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। हो वै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद जिठे सच्चे पातशाह हो।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपह मेल लए जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दोख गए अपह मेल लए जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ ताज अभिमान अरचिंत बिरानी सद है शरण पए जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए

गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम ला।

एक एक की पीर पछानै, घट घट की पट पट की जानै। जब उर करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब आ करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब हीते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

दुष्ट जिते उठवा त्यों उत्पाता, सकल मलेश करु रण काता। जे अस्तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताकि ताप तन कमै हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह।

जो हमरे विद होती मेरे सतगुरा सामिद तुम हर जन हो अपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता

बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होत पाए। कहु नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल हुआ बंधन छुटे, सब किश होत पाए। नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय।

सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की

0: मुख देखत अग जाए परे रे, जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चात, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।
1: गुरु मुख देख

अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाकस फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्तर दीन बो साज। सोदामा पदाते राखिया, गनका पड़त पुरे तै काज। श्री सत

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच ना।

0: फिर क्या अगर किया जित दिसे दरबार
1: बोलन बोली है जिन सुन तेरे प्यार
0: अमृत वेला सच ना वड़ियाई विचार
1: आवे घपरा नदरी मुक्त द्वार
0: नानक एवै जानिए सब

0: त्रिपवन महेश्वर नर्यासुर नेत नेत बन त्रिण कहत
1: नाम कथे कवन करम नाम बनत सुमत
0: भुजंग प्रयाद छंद नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग कृपाले।

0: धाने समस्ति निधाने
1: नमस्त्वंग ने नाते नमस्त्वंग परमाते
0: नमस्त्वंग गंजे नमस्त्वंग पंजे
1: नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग पाले
0: नमो सर्प देशे नमो सर्पे से
1: नमो राज राजे नमो साज साजे
0: नमो चाचाहे नमो माह माहे
1: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
0: नमो रोख रोखे नमो शोक शोके
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्पोगे
0: नमो सर्व जीतंग नमो सर्पीतंग
1: नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग
0: नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व यंत्रंग
1: नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण
0: नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे
1: नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे
0: अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे
1: पालंग स्वरूपे कुकर्मंग परनासी
0: सदा सर्वदार सिद्धंग निवासी
1: चरपचन पै प्रसाद अमृत कर में अमृत तर में
0: अखल जोगे अचल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे
0: अखल तर्म अलख कर्मंग
1: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता
0: सर्वंग पाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राणंग सर्वंग
0: सर्वं भुक्ता सर्वं जूता
1: सर्वं देवं सर्वं पेवं
0: सर्वं काले सर्वं

0: साकं सरीक है अमितो अमीक है
1: सदेवं प्रवाह अजय है अजा है
2: छंत प्रसाद के जहर जोर है कि हाजर हजूर है
1: मैं चुल कलाम है समतुल कलाम है
2: साहिब दिमाग है कि उसना चराग है
1: के कामल करीम है कि राज करहिम है
2: फिरोजी दिहंद है कि राज करहिंद है
1: करीमुल कमाल है कि उसल जमाल है
2: कंडमिल खराज है गरीबुल निवाज है
1: हरिफुल शिकान है रियासल फिकान है
2: लंका प्रनास है समस्त निवास
1: है अकंजुल करीम है रजाय करहिम है
2: समस्त जुबा है कि साहिब किरा है
1: के नरकम प्रनास है बैतुल निवास है
2: सब गवन है हमें सुरमन है
1: तमाम
2: जमा है मिकुल इमा है
1: करीमुल कमाल है के जरूरत जमाल है
2: प्रकाश है के मित्तो सुबास
1: के अजब स्वरूप है के अम्तो प्रभूत है
2: तो बसा है के आत्म प्रभा है
1: अंतरंग आनंद है के अम्तो अपंग है
2: मत भर चंत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदा
1: हर भर गंज हर नर पर पंज
2: अन गण प्रणाम मुन मन सलाम
1: हर नर अखंड भर नर अमंड
2: पवनास मुन मन प्रकाश
1: गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम
2: अंग आसन पंग
1: पार गत में तुदार जल थल महंत दिस विज बेअंत
2: पवनास तत्रास
1: आजान बाहु एके सुदाहु
2: ओंकार आद कथनी अनाद
1: खल खंड के आल गुर बर अकाल
2: कर प्रणाम चित चर नाम
1: अंचित गात अजित न बात
2: अंचित गात अनज बात
1: अंटुट पनार अंडा ठपार
2: अटीट त्रम अटीट करम
1: अंटाता महंत
2: हर गोल ना छंत प्रसाद कुनाले हर काले है
1: खल खंडन है मैं मंडन है
2: जगदेश्वर है परमेश्वर है
1: कल कान है सर्व बार है
2: चैतन्य जग के कर्ण है
1: मन मान्या है जग जान्या है
2: सर्वंग पार है सर्वंग कर है
1: सर्वास्य है सर्वनास्य है
2: सर्वना कर है स्वंबर है
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
2: मंडस है कल खंडस है
1: पारते पर है तृणा कर है
2: जपा जप है थप्पा थप है
1: अक्ति करता है अमृत अमृत है
2: अमृत अमृत है कन्ना कृत है
1: ताकृत है तरनी कृत है
2: अंतेश्वर है परमेश्वर है
1: अक्ता कृत है अमृत अमृत है
2: अद्भा कृत है अमृत अमृत है
1: निर्णायक है कल कायक है
2: स्वंबर है पुनालय है
1: नायक है सर्वायक है
2: पंजन है गंजन है
1: विपतापन है जब जपन है
2: कलंकित है सर्वा कित है
1: करता कर है हरता हर है
2: आत्म है सर्वात्म है
1: आत्म बस है जस के जस है
2: कुजांग प्रिया चंद्र नमो सूर्य नमो चंद्र चंद्र
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
2: नमो अंधकारे नमो ते तेजे
1: नमो बिंद्र बिंद्रे नमो बीज बीजे
2: नमो रासंग तामसंग शांत रूपे
1: नमो

0: करेंगे,
1: मानव इंद्र गजेंद्र रात पर जोन त्रिलोक को राज करेंगे,
0: स्नान गजाय अनेक स्वयंवर छाज परेंगे,
1: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे,
0: नर

0: राम क्लीम है लती जनन देखूं का सतगुरु प्रसाद नन पिया मेरी माए सतगुरु में पाया
1: सतगुरु ता पाया सहज शक्ति मन वजियां वताईया
0: राग रसम परवा परिया सब दो गावनाया
1: सब दो तगावो हरि के राम

0: सदा सत संभाले।
1: एहो कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरे नाले,
0: साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चित लाईऐ,
1: ऐसा कम मूले न कीचे जित अंत पछोताईऐ।
0: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले,
1: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।
2: अगम गोचरा तेरा अंत न पाया,
1: अंत न पाया किन्ने तेरा अपना आप तू जानहि।
2: जी जन सब खेल तेरा क्या को आप खाने,
1: अखै तविखै सब तू है जिन जगत उपाया।
2: कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया,
1: सुनर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
2: पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया,
1: जी जंत सब तुद उपाय इक वेख पसन आया।
2: रब लोग हंकार चुका सतगुरु पला पाया,
1: कहे नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।
2: पक्ता की चा निराली चाला निराली, पक्ता केरी विकम मार्ग चलना।
1: लब लोग अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना,
2: कन्या तिकी वालो निकी एक मार्ग जाना।
1: गुण प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वास

0: के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिय।
1: मनो क्यों विसारिय, एवं दाता जे अगर में आहार पहुँचावे।
0: उसनु को पोहे न सकी, जिसनु अपनी लिव लावे।
1: अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिय।
0: दाता सो क्यों मनो विसारी है।
1: जैसी अगन उधर मैं तैसी वार माया,
0: अगन सब इको जेही करते खेल रचाया।
1: जाति पाना था जमिया, परवार पला पाया।
0: लिव छुड़की लगी, तृष्णा माया अमर वर्ताया।
1: माया जिसरे मुझे बहुत जलाया।
0: नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया।
1: हर आप अमूलक है, मूल ना पाया जाए।
0: मूल ना पाया जाए, किसे विटो रहे लोक बिल्लाए।
1: ऐसा सतगुर जे मिले, तिसनो सिर सौंपिए बिचो आप जाए।
0: जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर वसे मन आए।
1: हर आप अमूलक है, पाप तिना के नाम का।
2: हर हर पले पाए, हर रास मेरी मन बन जारा। हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर ते रास जानी।
3: हर नित जप्यो जियो, लाहा खट्यो दिहाड़ी।
2: एहो धन तिना मिलया।

0: गीते जिचर हर रस पले न पाए।
1: हर रस पाए पले पिए, हर रस बोहर न तृष्णा लागे आए।
0: ए हर रस करमी पाइए, सतगुर मिले जिसे आए।
1: कह नानक होर अनरस सब विसरे जा। हर

सूरी जगत कसाई नील वस्त्र पर होवे प्रवान मलेश ताले पूजे पुराण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसे ना जाना।